0: of them. Stardust Illuminator. Stardust Illuminator.
1: Tamil, Tamil, Tamil. I can't pronounce this word.
2: दोस्त एक बात बता, हाउ डू यू प्रोनाउंस टी ए एम आई एल?
3: मुझे नहीं आता वो बोलने यार,
4: तमिल
3: उसको बोलते हैं,
5: तमिल लोग बोलते हैं, या तो तमिल बोलते हैं या तो तमिल बोलते हैं, तो आइडियली शुड बी तमिल.
6: The following sound experiments were recorded on Wednesday, March 08.